गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो

मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वडभाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिकास, धन धन सत संगत, जित हर रस पा

तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान। ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल।

हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्या

शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरे सुथूला, सब पर कृपा।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम

दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहरहु, ताके ताप तनक मह हरहु, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई,

0: जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर
1: दास जियो पिंड सब तेरीरा, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख कने कोई न जाने तुरा ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समागी।

सत्संग जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहती पाचे दसवें प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लेते आए फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से आए अर्जन रघुवेंद्र सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई थे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कानून दयावता है सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार तैंतर के खास दस बोलो जी। वाहे गुरु महाराज आप जी ने पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हड्डिया जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन चख्या दे चलाई दे वाहे देह कंडेट किया तेना प्यार त्यारे ने कमाई तैंतर की बोलो जी। वाहेगुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सी दिते बंध बंध कटवाए खोपड़िया लुहाइया चरखड़िया के चढ़े आर न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं आ रहा किसी कैसा सिंह तेना नहीं कमाई का ध्यान करके बोलो जी। वाहेगुरु पंजा तख्ता बस गुरुद्वार का ध्यान करके बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चिताव है चित आमण का सर का सर सिखो है जहां जहां गुरु खालसा शारदा में चरियात देते की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रायत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा दा मन नीमा मत दूजी मत पात के राखे आप वाहेगुरु गुरु की बनवाई पंडित सदा चाहिए देता जी हो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब धुर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हें तो आदि के पंथ में छोड़िया गया है उन्हें देखो दर्शन दार से सेवा समाज दान अपने खालसा जी बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु तार जी हो दुए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास ये की बनवाज जी आप जी चंद काम अरदास ने तार जी आपने बख्शिश की है आदि चरना पितर गुरबाणी सुखमणी साहब इसमें भूल पाठ दिता ऐसे वे संध्या समय जान के आदि चरना सो दर रह रहा साहब पाठ किते ने कृपा करो हो भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोत के सचखंड पुराण गुरबाणी का भाव सारिया संगतं देवतें प्राण की पैसा करो जी अगो तो शोते मित्र बाणी चार बल बुद्धि बख्शिश करो फिर आज इस खुशी में आप जी दख्शिया दाता पितर कड़ाप चाली देगा तैयार कर दतार आप जी भोग लो शीर प्रसाद शासन के दर्शन लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जब बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी कृपा करो गरीब नवाज आप दिन बख्शिया दातों जो नगर चुट सवार प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चढ़ गल बख्शो तो सदा ही सत्र अपने चरणा सेवा की भावना बख्शो बातदा करो गरीब नवाज कृपा करो जी अमृत वेले तो लैके दरते आई हैं सब संगतों की आदमी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर देते फिर भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गरीब नवाज कृपा करो उतार लियो खालसा पंथ नूं सिख कौम नूं एकता दिवाग पे आदि बख्शी करके सतो दाल बख्शो चानना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह बख्शा की वार्ता करो जी। गरीब नवाज गरीब दूर दुराले घर बैठिया लाइव कहता कि सरण कर रही हैं सारी संगतं नहीं हाजरियां प्रवान करो घड़िया लिखे देखे लाओ सतारा आपकी कृपा की संगतं उदा बख्शे संगत आपके चानना धन्यवाद करते शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु कर गुरु घर सेवा सिखल कर सकता मैं भेटा कर लगी चैनल प्रवान करो बहिष्कार साहब की कमाइया सबल करो कारो जो हाथ मददार सब संगतान दुभकामना पूरी करो जी दर मेहरा करो सेवा प्रवान करो भुला चुका माफी बख्शो पेतर हुक्मनामे बख्शा के ब्रह लड़ी वास्ते अच पाठ करने वास्ते आगा बख्शो शोध के पुत्र सेवा लाने के बाद दार ग्रह के कार सवार के चैनल प्रवान की बनाओ सही प्यारे मेरा दिन मेरा आपका नाम देता है नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की

तू प्रभु दाता दान हम सारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगू कि सिर न रहाई हर दीजे नाम प्यारी जियो। धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब के पावन पवित्र राज दरबार दी हाजिर भर के राजबाणी दे पाठ भाव हुक्मनामा कथा कीर्तन सरवण करके साहबां दी बख्शां लै रही परम सत्कार जो सतसंग जियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की पार बख्शिश हुई है साडे ते। अरदास तो उपरंत बड़ा ही सुंदर हुक्मनामा साहबां ने बख्शिया है। सूही महला पहला, सूही राग है, कत्ती रागां दे विच तुरकी बाणी है सारी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की। धन धन गुरु नानक साहब जी की बख्शिश हुई है। भांडा इत्थे सी रूपी भांडे नूं कहा गया है, जिस दे विच आपां इहनूं चंगा भी बना सकते हैं ते मंदा भी बना सकते हैं। मंदा किस तरह बनता है, हर वेले बना बनी जांदा विचारा काम क्रोध लोह मोह अहंकार ते होमे नाल। ते फिर चंगा किस तरह बनना, सेवा सिमरन नाल, ही गुरु की कृपा लै के बाणी नाल जुड़ के बाणी नूं समझ के अपने जीवन से अपना के उस दे मुताबक जीवन नूं चलाउण लई साहिबां दा हुक्म है। सुगुरु कृपा करे सानूं हुक्मनामे दे चलण लई समत बख्शे जी। हुण सूचनावां ने जी, आपां नॉर्थ हाल ते साउथ हाल वास्ते जो हमेशा दसवंध मंगदे हां, अज भी उसे तरह ही आपां नूं आपां करिए कोशिश वध तों वध उस विच हिस्सा पा के ते गुरु दीआं बख्शां लईए। कईआं ने मैं देखिआ सी एतवार उन्होंने पहला भी दिते सके, फिर दोबारा भी उस दिन दिते कई ने। सो कोई हर्ज नहीं, जिन्ना मर्जी गुरु साहब वास्ते आप कर सके उन्ना ही थोड़ा, क्योंकि गुरु घर का भाव गुरु का दरबार है। सो कृपा करनी सब ने, गुरु दी बख्शा लैनी है दसवंध कट के। सहज पाठ आपने निश्चरवाद भले ही रख लैने घर, सो ज्यों ही धार्मिक कमेटी की मीटिंग होगी तो मैं उन्होंने पासों पुछ के डेट दस देंगा जदों उसका आपां भोग पाउणे ने। जिन्होंने हले नहीं आरंभ किए वो कर सकते ने, अजे भी समा काफ़ी हैगा। तो टैक्सट कर दिओ अपने नाम ते किन्ने कर सकोगे, 408-712-4145। अज कल है जी महान शहीदी दिन भाई साहब भाई मन सिंह जी का, सवेरे शाम प्रोग्राम इस संबंध में होणगे जी। 16 तरीक नूं संगरांद है, सावण दी तिथि नाल शहीदी दिन है। उस दिन भाई साहब तारू सिंह जी बच्चियां दा गुरमुख कैंप फ्री लग रहा 13 जुलाई तो 17 जुलाई तक। उम्र रखी है उन्होंने 6 से 15 तक। सो आप जी ने उस दे विच बच्चियां नूं दाखला दवा के गुरु दी बख्शां लैणियां जी। मीरी पीरी दा दिवस आ रहा जी 24 जुलाई नूं। धन धन गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा आ रहा 7 अगस्त नूं। ते बाकी मैं सूचनावां ना देवां, एक जरूर दे देवां, सिख हैरीटेज नाइट सैनल दे अर्थक्वेक दी गेम दे विच हो रही है जी, अगे आ दूर जा के 22 अगस्त नूं। सो आओ हुण आपां पहला कीर्तन सरवण करांगे पातशाह अवतार सिंह जी पासों 7 बजे तक। फिर कथा होवेगी पातशाह भगरमेर सिंह जी टोरंटो वाले आ के कथा कर रहे ने, वो करनगे 7:45 तक। 7:45 तो आ के ढाडी जथा भाई साहब अमरजीत सिंह जी का ढाडी वालों द्वारा 8:30 तक संगत निहाल करेगा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।

पवन अरदास अवसारे रल के श्री राग महला पहला धन गुरु नानक सच्चे पातशाह 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी दे केवल ता केवल सानू सुचेत करदे ने, नाम विच ही सारी खुशियां ने, नाम ही जीवन दा आधार है, नाम नाल ही ए जीवन यात्रा सफली होनी है। तेरा खाना, तेरा पीना, तेरा उठना बैठना,

0: नाम बिना माटी संग रली है। नाम तो बगैर कहते ने वो मिट्टी विच रुल जाते हैं, रुल रहे हैं, उन्होंने अंदर फटकना लग जाती है, चैन नहीं, सबर नहीं, टिका नहीं। जिस जिंदगी नू बड़ी सहजता खूबसूरती बख्शिशा नाल जीना सी, वो जिंदगी जीना भुल जाती। सच्चे पातशाह जी दे नाम नाल ही हर चीज की शुरुआत करिए, उठन लग्या भी उहदा नाम लईए, सौण लग्या भी प्रशादा छकन लग्या भी ते गुरु करा के भी फिर शुकराना करिए। दाता सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी अवर न सूझे, दूजी ठाहर हार पर तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेख है छूटे, हम निर्गुण लेहो उबारी, सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परियो राख ले हो एहो बारी। महाराज कई जन्मां चो लंघ के फिर मनुखी जामा, अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी, मनुखी जामा मिलिया कर्मा वालिया नूं मिलदा, एवें किते दुनिया दे रंगा तरंगा विच गुआच ना जाइए, हर वेले मालक दा नाम जपिए, पंथ दी चढ़दी कला दी अरदास करिए, भुल चुक दी किमा जी सबना दी हाजरी परवान। आओ भाई साहब जी, भाई गुरमेल सिंह जी टोरंटो वाले जो हमेशा ही हर साल हाजरियां भर के गुरमत विचारा नाल तुहानू सानू सबना नू गुरु दर घर नाल जोड़दे हन। भाई साहब जी नू जी आया नू फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

नानक आप निहार सब कुल तार सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरता की है करते का हुए विचारो, दिख कर गावो सोहेला से जो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला, हो वारी दित सोहेले सदा सुख हो रहा। जियड़े संभाले हम देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तेरे दाते कम सुमार। संबत सह लिखया मिलकर पावो तेल, देव सज्जन सिसड़िया जो हो सह मेल कर एहो पहुंचा। सदरे नित पवन सदन हारा सिमरे, नानक से दे आउन रागा समा लगा। छे कर छे गुरु छे उपदेश, गुरु गुरे कोवे सनेक बाबा। जय कर करते कीरत होए, सो कर राख बढ़ाई तो राहो। विशेष असियां कड़ियां पैरा तिथी वारी महा होवा। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तिवेश राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चल दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूपमल आन लो पवन चबरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखन न तेरी आरती, अनहता शब्द वाजन तेरी राहो। सहस तब नैन नना सहस मूर्त नना एक तोरी, सहस पद विमल नन एक पद गंधबिन। सहस तब गंध के विचलत मोही, सब मैं जोत जोत है सोए। तिसके चानन सब मैं चानन होए, गुरु साखी जोत प्रगट होए। जो तिस पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लो।

0: मिल साधु खंडल खंडा है पूर विल कपिल के मन हाले मंडल मंडा है कर साधु कर रणोत पुनवटा है रहाओ साकत कर रस साधना जाने किन अंतर हो मिल खंडा है जीव जीव कलेक्ट पे दुख पावे जम काल सह है सिर गंदा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पौ खंडा है अवनाशी पुरुष पाए परमेश्वर और सोम खंड में मंदा है हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख बड़ा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंदा है रा जोड़ी पूर्वी महला तनिमा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत कहल की बेला इहा खार चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला और कटे दिन सरण आ रे मन गुरमिल का सवारे रहो यो संसार विकार संसे में पर ब्रह्म ज्ञानी इसे जगाए किया वे ए और सगत पता तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल आओ सुख सहजे बहुर न होए गो तेरा अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे
1: संतन की दूरे अंतर जामी पुरख विधाते नानक दास एह सुख मांगे
0: कर संतन की
1: वाहिगुरु जी का खालसा।

देवय नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहि मिटावौ सिमरौ जास विसंबरे कै नाम जपता गंत अनिकै वेद पुराण सिमृत सुदाख्यर कीने राम नाम इक आख्यर किनका एक जिस जीव बसावै ताकि महिमा गनी नयावै काकि एक दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उदारू सुख मनी सुकमृत प्रभ नाम भगत जिन्ना कै मन विश्राम रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघ्न न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न ब्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से तनमंते प्रभु को सिमरह से पतवंते प्रभु को सिमरह से जन परवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रदान प्रभु को सिमरह से बेमोहताजी प्रभु को सिमरह से सर्व के राजी प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तिन अनंद कनेरे प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन नीचले आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिनको प्रभ माया नानक तिन जन सरनी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन के सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तै केवल नाम संगति रह चलै जय मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरै
अनिक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जी मार ग्यो जाते केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नामन सदा त्याई, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कूट लक बाई, नाम जपत है पार पराई। अनिक बिघन जय आए सिंगार है, हर का नाम तत्काल उदार है। अनिक जून जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै। सा नाम जपू मन रंग, नानक पाइय साध कै संग। जिह मारग के गन जाहि न कोसा, हर का नाम आ संग तोसा। जे पैडै मांद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय मां प्यान तपत बहु काम, तै हर के नाम की तुम परचाम। जा त्रिका मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरत नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मंथन रंग रत्ती रंग एक, नानक जन कै बिरत बवेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन को वा प्रभु दीना। हर हर जन कै ऊट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता। नाम की महिमा संत रिद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम त्याईऐ। नाम तुल कछ अवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोई। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, घट शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रचना। शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, माँ उदास तपिसर थीवे। अग्न माहे होमत प्राण, कनिक सुव है वर भूम दान। न्यौली कर्म करे बहुआसन, जैन मारुग संजमत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि। मन कामना तीर्थ दे छुट्टै, गर्व गुमान मन ते उठै। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न भिख्या टरै। जल तो वह बहु देहे अनीत, शुद्ध का हुए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। बहुत सयान पजम का पौ व्यापै, अनिक जतन कर त्रिसन्ना त्रापै। भेख अनेक अग्नि बुझै, कूट पाव दरगहनि सिजै। छूट सनाही उपयाल, मुहि व्यापह माया जाल। अवर करतु सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे,
हर हर नाम हृदय सदगावे, जेको अपनी शोभा लूरे, साध संगे हो मैं छूरे, जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे, जिस जन को प्रवदर्श प्यासा, नानक ता कै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधानु, साध संग जाका मिटे अभिमानु, आपस को जो जाने नीचा, सो गणिय सब ते उचा, जाका मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप नहीं लेपा, निर्धन को धन तेरो नाओ, निथावे कौ नव तेरा थाओ, निमाने कौ प्रभ तेरु मान, सगल कटा कौ देव दान, करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जान आपे, आपन सांगा प्रभ राते, तुमरी उस्त तुम ते हुए, नान कवर न जान सकुए, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सासंग दुर्मत मल हिरिया, सगल उदम है उदम पला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जसन रसन बखानी, सगल थान ते उत्तम थान, नानक जी कट वसै हर नाम, सलोक निर्गुण यार यानिया, सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निबही नाल अष्टपदी, रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सास वार सिगारिया, गर्भ अगन मह जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साक्षैन, मुख पया बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै, जे प्रसाद धारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै, जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमुला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री सांग साथ बसा, दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्यागवर संग रचना, ऐसे दोख मूढ़न दब्यापे, नानक काढ़ लिहु प्रभु आपे, आद अंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नव निद पावै, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दरगह मानु, तिसे विसारे मुग्ध अजान, सदा सदायो भूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्या कौडी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे तो हे, गर्द प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पतत विकराल, नानक काढ़ ले हो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पेख अंतर मल माया, छपस नाहीं कच करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरह अथाहा, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सह समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह ले होड़ निभावै, कहां बुझारत बूझै डूरा, निष्कहियै तो समझै पूरा, कहा विष्ण पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग, कह पिंगुल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हा उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाई सुवावै ना चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत, बलुआ के गृह पीतर बसै, अनद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर्माने मने प्रतीत, काल नया वै मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार मा लोभ त्रोह,
ਪਿਆਹੂ ਜੂਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਅੰਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡ ਕੈ, ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਲੇ, ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੂ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਉਠਾ, ਜਿਸ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਗ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਅਗੰਤ ਸਾਹੂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰ ਤੈਨ ਦੁਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸਾਹੂ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੂਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਪ ਹੀ ਖੂਵੈ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਾਥੈ, ਉਸਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ, ਬਿਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਓ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨ ਸਹਿ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ, ਜੋ ਦੀ ਸਹਿ ਸੋ ਚੱਲ ਨਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਿਹੋ ਤੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ, ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ, ਤਾਕੋ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹੇ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟਾ

मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अस्तो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता, मिथ्या त्रु मोह अभिमानु, मिथ्या पशु पर कर्तव मानु, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कौताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव, मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम लये, बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कहूत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवतता कै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यों कृपन के निरारथ दाम, धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कछ अवर कमावत, मन ही प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर पेक न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक पूर्ण जन चरण पराता।

चर्ज कथा अष्टपदी साध के संग मुखु जल होत साध संग मिल सगली खूत साध के संग मिटे अभिमानु साध के संग प्रगटे सुगयानु साध के संग बुझ प्रवनीरा साध संग सब होत नबीरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संगी कुपर जतन साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ माही सुमानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेनु साध के संग मनोहर बैनु साध के संग

बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। स्लो कुरता रह जो अंतर नाम, सर्व में पेख भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको पर सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रै रूप न पिख नेत्र, साध की टैल संसंग हित। कर्ण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद विख्या पर हर है, मन की बास न मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानकोट मदे को वैसा परस। वैष्णो सोजी सुपर सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुए ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहु फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे। मंथन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होत कृपाल। आप दृढ़ वरह नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिनसे सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। सास सुन पापा मल खोवे, तिस भगवती की मातु तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत, मंथन अर्पय विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नामा तो मैं शोध है। राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नयावे। वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, सुख मैं जाने स्थूल। चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौहर नाम है जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सास सुन पावे जन कोए। कर कृपा अंतर उर तारे, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारे। सर्व काउ खुद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम। काहु जुग कित न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म। जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिसने दरी आया, दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास कर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे। सगल संगा तुम उदास, ऐसी युक्त नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा तुम हितावे, जीवन मुख सो कहावे। तैसा अर्क तैसा सुख, सदानंद तै नहीं वियोग। तैसा स्वर तैसी सुमाटी, तैसा मृत तैसी बिखाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरता ऐसाई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगल लिठाओ, जित जित घर राखे तैसा तिन आओ। आपे करण करावण जोग, प्रभाव सोई पुन होग। पसर आप अंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म कै रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रचि बहु विधनिक प्रकार। अष्टपदी कई कोट हुए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पै तीर्थ वासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपिश्वर होते। कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कबका विचार है। कई कोट नवत नाम त्याव है, नान करते कंत न पावे। कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट बेगातन निकोर। कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख ना करह। कई कोट माया श्रमाए, कई कोट पर देश प्रमाए। जित जित लाओ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिर जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्पो पाए, कई कोट पात्र बिखन पजाए। कई कोट पवन पानी बह संतर, कई कोट देश भू मंडल।
कई कोट सशियर सूर नखेत्र कई कोट देवदान अविंदर सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जी जिस भावे तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किनर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा सब ते नीरे सबु ते दूर नानक आपलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मरे कई कोट भोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काले तक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तय तय रखे नानक सब किस प्रभ के हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संकिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ्यास जिन को मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए अपसु प्रसन्नो नानक ते जन सदा तन तन कई कोट काणियर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक कंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभ ते हुए ब्रह्मा समात ताक अंत न जाने कुए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास दिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बीती सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर पै सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे तुमरा सुख सह सुमावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर ना ही कोए नानक तिस बलिहार नै जल थल मही रसोई अष्टपदी करण करावन करण योग जो तिस पावे सोई हो किन मैं थापो तापन हार अंत नहीं किछ पार अवारा हुक्मे तार तर रहावै हुक्मे उपजे हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै ता पात्र त्रावै प्रभावै बिनसार से राखै प्रभावै ता हर गुण पाखै प्रभावै ता पत तुधारे आप करे अपन बिचारे दुआ सिरिया काप स्वामी खेलै बिकसे अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवर नायावै कहो मानुक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ हुए तन सब किचले जो तिस पावै सोई करे अनजानत भी किया मैं रचै जे जानत अपना बचै पर मैं पूला दै दिस्तावै निमक माय चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भग दे नानक ते जन ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवास जा का दृष्ट कछु ना आवै तिस तत्काल दै जिस पे उठावै जागू अपनी करै बख्शीस ताका लेखा न गने जगदीश जीव पिन सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई किसका बल ना ही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावे सोई बुनती हो कबू ऊंच नीच में बस है कबू सोभ हर करंग हस है कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत्य करे बहुपात कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तलवार कबू हुए वह बड़ राजा कबू पे खारी नीच का साजा कबू कीरत में आवे कबू भला भला कहावे ज्यो प्रभ राखे ते वही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मुंह धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू से साजक मुख्यान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनिक जोन पर मैं प्रमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे ज्यो प्रभ पावे तिवे नचावे जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबू सा संगत उपावै सुस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास हो सुस्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते कलांग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल मै जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आए अपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाने में जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जन्म मरे बोजोन परमावै तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्ता कै सुख पावै धनवंता हुए कर गरबावै तृण समान का संग न जावै बहुलस्कर मानुक ऊपर करयास पल पीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय किस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान
कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले फिर तारे निक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर अवतार निक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दर गह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व गिरें जा कामन हो।

सुपन मनोरथ विरथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किस प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नान कर जाप करण करावन करण आर इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप आप सोई जो किचकी न सो अपना रंग सब ते दूर सबु कह संग बूझे देखे करे भवे का पहे का पह नेक आप है एक आप है अनेक मरण बिन से आवे न जाए नान सदी रहा सुमाए आप उपदेश समझाए आप फिर रचिया सब कह साथ आप किन अपन विस्तार सब कछ उसकाउ करने हार उसते पिन कहो किचो थान तनंत्रे कह सोई अपने चलताव करने हार कौत करे रंग आपार मन में मन अपने माए नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब कीना कूड़ मदे किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण मखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार उसपदी संत कै दुख नार जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग निंदक पीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जून लवै संतन कै दुखन सर्प जून पाए संत कै दुखन त्रिगद जून किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन सुख संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का ताव को नाहे नान सुंद पावै तो भीखत पाए संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक किन टिक न पाए संत का निंदक महतियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा वियोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावे तो उसका पी गए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डाल लाग गए संत के दुखी को सब दिया गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म में मरे संत की दुख ना सुख ते डरे संत के दुखी को ना ही ठाऊ नान संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अध बीच ते टूटे संत का दुखी किथे काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइये संत का दुखी उजड़ पाइये संत का दुखी अंतर थित होता ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहे अपन बीजा पे ही खाहे संत के दुखी कहो अवर नरकन हार नानक संत पावे ता ले उबार संत का दुखी हों बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पावक इंद्र नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला ज्यो बुआड़ तिल के तमाही दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमितिया कहत किरत निंदक का तुर ही पाया नानक जो तिस पावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर्द है मिले सो जाए संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी न मरे न जीवाइय संत के दुखी की पूजे न आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत कै दुख न तिष्ठे कोए जैसा पावै तैसा कोई हुए पया कीर्तन मिटे कोए नानक जाने सच्चा सोए साब घट दिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्त करो दिन रात सत्याहो सास की रात सब कुछ वर्तै तिसका किया जैसा करे तैसा खुथिया अपना खेलाप करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक सजो सियानप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आसार मन रखो नानक दुख भरम पौ जाय अष्टपदी मानो की टेक वृथ्वी सब जान देवन कोई कह भगवान जिस कह दिया रह अघाए भव न तृष्ण लग गए आये मारे रखे कु आप मानु कह किछ नाही आ तिसका हुकुम बूस गोय तिसका नाम रख कंठ गुरोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगन न लागे कोई उस्तुत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसन अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नानो पेक ठाकुर का रंग सा सब संग

आप जपिय हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर थर गैना अनुपूजल मत्था बड़भागी तेजन जग माही सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार सी तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी इको एक एक पछाने तुत की उसो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपना सुजै तिसकी जानू तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत सर्व रूप त्यो हर जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बख्यान गृष्ट मैं सोई निर्वाण एक उपर जी जन की आसा तिसकी कटी अजम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नान किसे न लागे दूख जिसको हर ब्रह्मन चित आवै सो सं सुहेला नहीं डुलावै जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवको किसते डरै जैसा सत ऐसा दृष्टा अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तब सब बुझिया जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोई सो न किच जन्म न किच मरे अपन चलता भी करे अवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सकल मैं आप अनक जुग दृष्टा पुताप अविनाशी ना ही किच खंड धारण तारे हो ब्रह्मांड अल कपे पुरख प्रताप आप जपाय नानक जाप जिन प्रभु जाता सुसुभावन सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागे विष्णु कृपा करह बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरखोत्तम करमान जो किछ करे सुप्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाए होवे सो होए करण हर पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माए समाए हुई सुख निदान उन्हों बन आए आपस को आप दिन मान नानक प्रभ जन एको जानु सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गानन हार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु ना होए जिसो प्राणी लोचै कोए जिस बिना ही तेरा किच काम गत नानक जपे कर नाम रूपवंत हो ना ही मोह है प्रभु की जो सगल कट सो है तनवंता हुई क्या कु गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दर्भ है अधूरा जे को कहा वह प्रभु की कला बिना कहता वह जे को हुए बह दातार किस दिन हार जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदिर को थम है थमन क्यों गुरु का शब्द मन है अस्तम्भन जो पाखा नाव चढ़ता रहे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हुए विगास जो माव ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुप्रभ देवनहार अवर त्याग तुत सचतार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजाल कौन बसाई तेरे संग लपटे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पतछेती कर जाहे जिस वक्कर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज मान लिहो मन मूल राम नाम हृदय में तो लाद के संत संचाल अवर त्या बिखिया जंजाल तन तन कै सब कोए मुखु जल हर दर कै सोए हो व्यापार विरला व्यापार है नानक ता कै सद बलिहार है चरण साध के तुए तुए पियो वर प्रसाद को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़ भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनेक विघ्न ते साधु रखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गही संत दरे आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक कौ जीवा लनहार भूखे कौ देवता दार सर्व निदान जाकी दृष्टि माही पूर्व लिखे का लहना पाही सब किस तिसका करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रैनी सब ते ऊच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
जा कैमन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभजीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जा कै हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। सच दिर सचा आकार, सच वरतै सचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। सलोक रूप नरेख न रंग के, चित्र गुण ते प्रभिन्न। तिसे बुझाए नानका जिसो वै सुप्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मानु की तुम प्रीत्याग। तिस्ते पर नाही किछु कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद। सा तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन हो नराओ। मनसा पूर्ण सरना जो, जो कर पाया सोई हो। हरन परन जा का नित्र पूर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनद रू मंगल सजा कै, सर्व थोक सुनिए कर था कै। राज में राज, योग में जोगी, तब में सर्वृष्ट में भोगी। त्याय त्याय भगत है सुख पाया, नानक इस पुरख का किन अंत न पाया। जाकी लीला की मित नाही, सगल देव हारे अवगाही। पिता के जन्म के जान है पूत, सगल पटोई अपना सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम ध्यान है से। त्यो गुण में जाकू परमाई, जन्म मरै फिर आवै जाय। उच नीच इसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे करंग। नाना भिद किनो विस्तार, प्रभ विनाशी कंकार। नाना चलत करे किन माहे, पूरे पूर्ण सब ठाए। नाना भिद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीव है नानक कर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे आगास पाताल। नाम के तारे सगलाकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन। नाम के समुद्रे सुन श्रवण कर, कृपा जिस अपने नाम लाए। नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत्या का सत्य स्थान। पुरुख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की वाणी। सत पुरुख समाहे समानी, सत कर्म जा की रचना। सत मूल सत, सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली। जिसे बुझाए तिसे सब पली, सत नाम प्रभु का सुखदाय। विश्वास सत नान गुरु ते पाई, सत बचन सत उपदेश। सत जन जा के हृदय प्रवेश, सत नृत बुज जे कोए। नाम जपता की गत हुए, आप सत किया सब सत। आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सो करने हार। हवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया। नानक जोत सुभावै सो वरतिया, बिस्मन बिस्म पहे बिस्मा। जिन बूझया दिसाया सुहाग, प्रभ कै रंग राज जन रहे। गुर कै वचन पदार्थ लहे, ओ दाते दुखट नहार। जा कै संग तरह संसार, जन का सेवक सोवड भागी। जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावै। गुर प्रसाद नानक फल पावै। श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत पर सुनहार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत भेखनहार, नाम सत सत्यावनहार। आप सत सत सवधारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत सुनता। बुजनहार को सत सब हुए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया। जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। ऐ ते निरपा हुए बसाना, जिस ते उपजया तिस माय समाना। बस्त माई ले बस्त गढ़ाई, ताको पिन्ना कहना जाय। बुझ है बुझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर कौ सेवक जानै संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रपालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रवतार है, नानक सो सेवक साथ साथ समार है। अपने जन का पर्दा ढाक है, अपने सेवक की सर पर रख है। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत रख है, ताकि गत मित कोई न लख है। प्रभ के सेवक को न पहुंचे।
प्रभ के सेव कुछ देव चेजो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेव दह जिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काटता पोता को राखत देकर हाथ मानस जतन करत गोपात तिसके करत वृथे जात मारन राखे वरन कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करै रे प्राणी जप नानक प्रबल कविडानी बार बार बार प्रभु जपिए पी अमृत मंथन तृपिए नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसके खबर नाही दृष्ट आया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुकर नाम का संग नाम रस जो जन तृपताने मंथन नाम मैं नाम समाने उठत बैठ सोवत नाम कहो नानक जन कह सदकाम बोलो जा जे बात दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भगता तुम कह चाई प्रभ अपने स्यो रहे समाये जो हुआ हुवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह एक न जानू आठ पैर प्रभ सह हजूरे कहु नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवश्य अनुभ सगली चाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेव कौ गुर सदा दयाल सिख की गुरु दुरमत मल ही रह गुरु बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुरु का सिख विकार ते हटै सतगुर सिखो नाम धन दे गुरु का सिख वड भागी हे सतगुर सिखा हलत पलत सुवारै नानक सतगुर सिखो जी नाल समारै गुरु कै ग्रह सेवक जो रह गुरु की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बिचे सतगुर के पास इस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नहीं कामी तिसको प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेव गुर की मतले पीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुरु को भल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन मैं पार ब्रह्म एक अब नहीं कछ परम सह सियानुप लया न जाइये नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत एटत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गय गवे सुनकर वचन करन आगानी मन संतोखा तम पतियानी पूरा गुर अख्यो या का मंत्र अमर दृष्ट पे कह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानु जिस पावे तिसले मिलाए जीवाए कुष्ठत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहु बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन्ह न पाई अनिक भगत बंधनित कर है चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सदगुरे अपने नानक जिस प्रसाद है सब प्रभु जपने हे हरस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणता साठ पैर हर का नाम ले सच बदे सेवक को दे ओ माया कै संग न लेप मन मै राखै हर हरेक अंधकार दीपक प्रगासी नानक परमो दुख तैते नासी तप्त माय ठाठ वरताई अनंत भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे देशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपो हुए बसे सगल ब्याज मंति खै नसे जिसका जातिन कृपा तारी साध संग जपना मुरारी थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हज श्रवन निर्गुणाप सरगुण पियो ही कलातार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोई सर्व अंतर को सोए ओत पुत्र व्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक
साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक ज्योत अनुसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और उपासमीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ समर्थ दृढ़ कर कहो नाम हरवत तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माही सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वह सो तन हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिसो बा को करे भली करनी सासो बा पज हर की सरनी अनिक पावी रोग न जाए रोग मिटे हरव खदलाए सर्व निदान में हर नाम निदान जब नानक दर गए परवान मन प्रभु दो हर कहनाए दा दिस्ता बता बैठाए ताको बिघन न लागे कोई जा कह हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन स्वय पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कहे जन साचा जन मरै सो काचो काचा आवा गुण मिटे प्रसिव आप त्याग शरण गुरुदेव क्यों रतन जन्म का हुए उदार हार हर सिमर प्राण आधार निक उपाव न छूटन हारे सिमृत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना सुतमीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बेगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मातू लेह याने भगत बिना बोडू बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो ची चरण कमल राखो मन वाहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार पूत सत हर पू नाओ सह सुभाए नान गुन गाओ गुन गाव तेरी उतर समैल बिन सुजाए हो मैं बिख फैल हुए अचिंत बसै चुक नाल सास ग्रह सर नाम संभाल चाड़ सियान सगली मना सा संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो बिहार किया सुख तर गय जयकार सर्व निरंतर इको दे कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको साला एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक हर पूर्ण पूरे प्रव्यापनिक विस्तार एक ते पहेक अराध प्राचित गए मंतन अंतर एक प्रवरता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यागो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्टि मां सुख होए हरस पावे बिरला कोए जिन चाके से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजय चाउ साध कै संग परे शरणान सुभ त्याग अंतर प्रगास अंदिन विलाग बड़भागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होय दयाल सेवक कीनु सदा निहाल बंधन काट मुख जन पया जन मरण दुख प्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सपूरी रव रया सत्संग अजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मैं राखै गुर प्रसाद कुबिर लालाखै सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा काढ़ै गुरपूरै तते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आं त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो भगत पाए करिए संसार
बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम गूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का हो तनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतरे ही सुवाओ नित्रोपेग दर सुख होए मन विकसै सा चरण तोए भग जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्ती चै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभक सन दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुर कारण करतारु भगत जना के प्राण आधारु जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच जानु नानक तुमरी शरण पुरुख भगवानु सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए निम कर के गुण गाय अनिक राज भोग बटियाई हर के नाम की कथा मन पाई भो भोजन का पुर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभु देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सर्वगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानकाया पे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप अपार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम अपन खेला वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक कह हरगम पार तब नरक सुर कौ कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडार कवन कथ डरै आपन चलताप करने हारु नानक ठाकुर अगम अपारु बनासी सुख अपन आसन तै जन्म मरण कौ कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपना पापी चर जा नानक अपन रूपा पी उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चिद्र लगत को कीश जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावै तय किसै भू कवन तृप्तावै करन करावन करने हार नानक करते का नाही समारु जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माई बा मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै परवीन तै वेद कतेव कहा कुचीन जब अपन या पापुर धार है तो सगन अपसगन कहा विचार है जय अपन ऊच अपन अपनेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जय छल अचेत अभेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया आपस को आप आदेश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपना पाप तियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उच ते उचा नानक आपस को आप है पहुंचा जय आप रचु प्रपंचकार त्यो गुण में किन्नु विस्तार पाप हुनते पही कहावत को नरको सुर्ग बंचावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मुह परम पै पार दुख सुख मान अपमान प्रकार की उबकियान अपन खेल आप कर देख खेल संकोच है तू नानक कह जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दूह पाका आपे धनी उनकी शोभा नुहू बनी आप कौत कर आनंद चूज आपै रस भोगन निर्जोग जिस पावे दिस आप नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे
बेशुमार अथाह अगंत्य अतुलै ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बुलै।

कहत विस्तार अष्टपदी। आप कथ है आप सुनने हार, आप है का विस्तार। जत पावे ता श्रेष्ट उपाय, अपने भाणे ले समाई। तुम ते भिन्न नहीं किच हुए, अपन सूत सब जगत परोए। जाख प्रभ जीवा बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का वेता, नानक सगल सृष्ट का जीता। जी जंतर सबता कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोए न मारै, सो मुआ जिस मनु बिसारै। तिस त जबर कहा को जाए, सब सिरेक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सभाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार।

अंतरजामी रहो व्याप, प्रतपालय जीयन भोपात, जो जो रचियो सो तिसह त्यात। जिस भावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक इक जानिया, जन लागा हरि कह नाई, तिसकी आस न बिरती जाए, सेवक को सेवा बने आई, हुकम बूझ परम पद पाई, स्ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पै निर्वैर, दिन पूजै गुर के पैर, हे लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपै मिले, साध संग मिल कर हो आनंद, गुण गाव हो परमानंद, राम नाम तत करहु विचार, दुर्लभ देह का करहु उदार, अमृत बचन हर के गुण गाऊ, प्राण

अष्टपदी। संत संग अंतर प्रवडिटा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक सकट माहे, अनिक रंग नाना दृष्टा हे। नौ नित अमृत प्रभु का नाम, देही मह इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तैनाद, कह न जाई चर्ज विस्माद, तिन देखिया जिस आप दिखाई, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत, तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन

चार कुंटल गहद से सुमाही, तिस्ते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमृत मह देख, शशियर सूर नक्षत्र मह एक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आप अड़ो न कब हूं डोले, सर्व कला कर खेल खेल, भूल न पाइये गुने अमूल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, धार हो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नासु, नानक तिन में इहो विसासु।

सुनै सुबचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख मानै करन करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आ

तिस भावै ता एकंकार, अनिक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस ले मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा भरपूर, अंतर गज से आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए।

सब ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की निमाया सब कह मद अलिप्त रह जो किछ कहना सुवापे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इसते हुए सुनाही बुरा पूरे कहो किने कछ करा आप भला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग्राच ताकि गतमित कही न जाए दूसर हुए तन सो जी पाए जिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने कि सदा सुख हुए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का इह सुआउ जन कै संग चित आवै नाउ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक

सुखमनि, सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख है मंगा है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया सुमाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना अखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जेते सुपावा विण पाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे ना सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है ईसर बर्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है शास्त सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है सात संतोख ज्ञान सुना है आठ साठ का इस्नान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है सारा गुणा के गाह सुना है सेख पीर पातशाह सुना है अंधे पावै राह सुना है हाथ होवै असगाह नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछुताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना है सुरत होवै मन बुद्ध मन्ना है सगल पवन की सुध मन्ना है मोहे चोटा ना खाए मन्ना है जम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना है मार्ग ठाक ना पाए मन्ना है पात स्यों परगट जाए मन्ना है माग न चलै पंथ मन्ना है धर्म से तीसन बंद ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना पावै मुख द्वार मन्ना परवारै साधार मन्ना तरै तारी गुर सिख
मन्ना नानक भावा है ना भेखो ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावा है दरगह मान पंचा सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करे विचार करते कह करण नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै हो वै सचियार तवलै उपर केता पार धरती होर पर होर होर तिस ते पार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया उड़ी कलाम ए हो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तो पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तो दुपावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जेव पुरमाए तेव तेव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन देह पानी धोता है उतर सोखेह मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई वैण गुण कीते भगत न होए सो अस्त आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माहु ना कोई जा करता सर ठीक औसा जे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सा लाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै
नानक जी को आपो जाने अगै गया ना सो है। पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलु एक तात लेखा होए ता लिखी है लिखा होए विनाश नानक वड़ा आखी है आपे जाने आप सलाही सलाही इति सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै सुमुंद न जानिया है सुमुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जेत समन होना भी सरा है अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कही है बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए किते मंगा है जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुट है वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूरख खाही खाहे किते आ दुख भूख सद मार ए पैदात तेरी दातार बंद खलासी भाण होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आखै से पे के ही के जिसनु बख्से सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाहो अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारिये अमुल भंडार अमुल आवा है अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सक है केई के जे वड पावे ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाथ अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परिस्यो कहियन केते गावण हारे गावह तुहनो पौन पाणी बैसंत्र गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गोपत लिख जाण है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर।

मुख उजले किते छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं शपाय शांत तुआ प्रसाद चक्र चेहन अर भरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को न कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित ओज किह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणि जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत त्व सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग नृतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग आगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तिरवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रपोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरमे नमस्तंग जलाशरे नमस्तंग निराशरे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमाजेबे नमस्तस्त अजेबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग नृतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तंग अपेव नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सात अबंदे नमस्तंग नृसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सोहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले। चाचरी शांत त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है आते हैं आपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निधान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचांज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजा हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरश्रीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अशूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबा हैं अगा हैं अमान हैं निधान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नरसंगी प्रमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्ये नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ते स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ते विभूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे
नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमे अभोगी अपुगते नमो योग युग वे सुवरंग परम युगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं शनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृहदकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अगं ओघहर्ता परं परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात शांद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वगयानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं परसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदसिद्धं निवासी चरपट शांतव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल योगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पहाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांतत्वा प्रसाद आदरूप अनादमूर्त अजोन पुरुख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुन काल यत्र तत्र विराज हे अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश आउर ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जानही जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बक्र फिर चतुर चक मानही पुर तीन लोक चौदह के बिखय जग जापही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गडन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुत दायक काम आप रूप अमेक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जेहे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाकत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनासु अजान पाहु

इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मिथ अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंद तुआ प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे पूजांग प्रयात छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वारती चतर चक्र पारती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परमं न पित्रय न कर्मं न काये अजन्मं अजाये न चित्रय न मित्रय परे हैं पवित्रय प्रथिसय आदिसय अदृशय अकृशय भगवती छंद तुआ प्रसाद काथते के आशे जदेसय के अभेज्य भेसय के अगंज कर्मय के अपंज परमय के अभिज लोकय के अदित सोकय के अवधूत वर्णय के बेपूत करणय के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा आवरण है के जगतं प्रति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनपाऊ अनूपे के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक है अधीने के रोजी रजा करे ही मेरे हक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अपुल गुना है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है के सर्वत्र गौने है के सर्वत्र पौने है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाला है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल अलम है के साहिब कलम है कि हुसनल वजू है तमामल रजू है हमें सो सलाम सली खतम उदाम गनीमल शिकस्त ग्रीबल परस्त बिलंदल मकान जमीन जमान तमीजुल तमाम रजुअल निधान हरीफल अजीम रजायक यकीन अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुगत सुदा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ अंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुवत स्वरूप है अशिज है अशुत है किनर्कं प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अन उक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातुं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी दहन दहें के राज करहंद है करीमल कुमाल है के हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकान है हरासुल फिकान है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है के नरकुं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गुवन है हमेशुल रुवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीन अल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलं प्रकाश है के आमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार शांत त्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनुगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम आनशे जो आंगो आसन अपंगो उपमा अपारु गातमित उदारु जल थल अमंड देश विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुपव अनासु त्रिव तर तुरासु अजान बाहु एक सदाहु ओंकार आदु कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशे जुगात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनठट भंडार अनठट अपार अठीठ धर्म अतठीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तो प्रसाद करुणालय है अरकाल्य है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रेत के तरण है जाग के करण है अनुमान है जग जान है सर्वंकर है सर्वंकार है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खालखंडस है परते पर है करुणाकर है पारते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है कृताकृत है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलपायक है विश्वम्भर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है आर्यगंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग तम संग शांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामं बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुकर्मं बेभूते सदा सच्चदानंद सतरं प्रणासी त्रिमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे
सदा अंग संगे अपंगं विभूते। चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते। दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें त्वा प्रसाद सवैये, श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो घर। जोग जति के सूर सुरार्दन, सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मात, को न देखियत प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बेन एक रति के। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सुवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पाउन के गौन को जात निवारे। भारी पूजान के भूप पली बेद, न्यावत शीस ना जात बिचारे। एते पहे तो कहा पहे भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। जीत फिर सब देश दिशान को, बांजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत, कौन गन नहीं जात बिचारे। श्री पात श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के धाम सिधारे। तीरथ नहन दया दम दान, सुसंजम नेम अनेक बसेख है। वेद पुराण कतेव पुराण, जमीन जमान सबान के पेख है। पौन आहार जति जात तार, सबै सो विचार हजार क देख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेख है। सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे। भरी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। तोर अरीर मरूर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पात श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार, अब चार सार की तार पशैया। तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान को तोड़न हार, सो बात नहीं चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक, जा चुक अनेक सो एक दवैया। दानव देव निंदन साचर, भूत भविख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, सत्र सवै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र विजेंद्र नरातप, जौन कर लोक को राज करेंगे। कोट इस नानक जातिक दान, अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत, अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है पाग, ते नर फिर न देह तरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन, मूंद कै बैठ रहे हो। बक ध्यान लगायो, नाहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन। लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बिख्यान सो बैठो कै। ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन ले हो सबै। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर आवाची दिशा में, कहूं पशा को शीस निवायो। को बुतान कौ पूजत है पाश, को मृतान कौ पूजन तहायो। कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दह रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो। आप हाथ दह मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिया। सब बैरन को आज संग्रिया, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है।
आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री आसतो जिजू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस खंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सैव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जशन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बाद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट की पट पट की जाने, जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब अकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलस देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ता कौ कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन भिन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आध जुगाद स्वरूप सुजम भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता, जिया सतुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवा मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है आय है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह शवै सकै ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दार रिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप हाथ तै लेहो उबारी, सर्व ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सोभराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री असतुज जप पए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावै सोई, दुख न तसै व्यापत कोई अड़िल, सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर की रहाय, हो जो याकी एक बार चौपाई को कहा, चौपाई संबत सत्रह सहस पणि जय, अर्थ सहस फुन तीन कहि जय, भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तोहे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार।

परम सम्मान योग गुरु प्यारी गुरु सारी खालसा साध संगत जीओ डपागी हो जो अमृत वेले दे दीवाना विच हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो गरीब नूं सच्चे पातशाह कृपा करन साडा तुहाडा गाव्या सुनिया थाए पा देण सभनां नूं सतगुरु नाम दीआं दातां सिखी सदक भरोसा बख्शण। प्यारी साध संगत जी समां हो रहा है अज दे मुख वाक दे विचार दा सत्कार योग ज्ञानी गुरु मेल सिंह जी कनेडा वाले आप जीआं नूं अज दे मुख वाक दे विचार सरवण कराउणगे जी। दस रहा पासों हुई भुलां दी खिमा बख्शद होए फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

क्या नाही कर तेरा साचा नाम बिरा आधारू साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया जन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाईया कह नानक सुनो संतो साचा नाम मीरा आधारू आजे पंच सबद तित कर सुभागे सबद वाजे पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौसे नाम हरकै कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे अनद सुनो वड भागी हो पार ब्रह्म प्रभ पाया दुख रोग सन ताप उतरे संत साजन पए सारसे सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चरण लागे सुनते पुनीत कहते पवित

बिघन न लागे, बिघन न लागे तिल का कोई, कार्य सगल सुवारी रहाओ, मिल साधु दुर्मत खोए, पतत

जन नानक सुख वसंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै, सब चूकै मन की चिंती, हर हर नाम।

बेनती कर दें आप जी के चरणों च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देख देख ते धनी हन, सरबन सुदानी हन, खालसा पंथ के सृजनहार हन, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संत बोलो श्री दास ने आरंभता की सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना तो, बिन करतार न किरतम मानो, राग कल्याण पातशाही दसवीं। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिंगल हन, 31 राग ही मिश्रित हन, 62 राग, एडा वड्डा खजाना। उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने, 177। सत संगत बोलो श्री, इदी परचोल 1990 दे विच शुरू हुई सी और इन्हों 2 साल लगे सन। लुधियाने विच दास उदे विच शामिल सी। ये बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सत संगत। जे असी उस देन नू संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया, उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ये उही क्रांति ते सी, सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद।